डाक्टरलाई सुकुसे ज्याझो नेपालले से नेपालले ज्याझो छिनि नसुना दिले रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रिय छु थग रेडियो स्टेशनले ज्याझो नापद गुड लाइफ बिस्किट्स अलि जीवना खरस मिला ज्याझो अपराधिक सोजने दि रविन्द्र चौधरी ज्याझो नेपालले स दक्ले थापाङ बुखे जी मिसा दबु बुखते मिसा दबु धका धाबले 1137 तजाई छठ खुनु अटगारे कसलाठो सस्ति खुनु पलिस्ता जुगुख ओखुनु चाहिँ बुदिन न्याकी देवा मिसा द बुले छिन आबद जुया दि मदुसा वाछु छेया जपी सुना मिसा पि आबद जुया दि मदुसा सिपिना आबद जुया दि फु ओके लागे दिए द बुले फोन यान दिसा देवा मिसा द बुयु चाहिँ थौगे नम्बर आतको मरु व्यक्तिगत नम्बर छ दु तर मिसा द बुहरुका दिए द बुय अफिसे दैगु ख ए जुया दिए द बुय नम्बर फोन याना छि देवा मिसा द बु बारे जानकारी न कय दि फु ओले देवा मिसा द बुया थिथि थाया नआए पनि भु नम्बर नकया दिफु जस्तै जिल्ला नआए नगर नआए पनि न नम्बर कया दिफु फोन नम्बर ख 536902 5359609 ख दिए दबु नम्बर अलि दिए दबु नम्बर छिमेमेको ज्याना छला दिजु नेवा दिए दबु धका चाहिँ विशेषना जनजाति आदिवासी जनजाति कोट्या छुन नेपाल सरकार बिगु कोट्या चाहिँ छि अन कम्पिट या मासा नेवा दिए दबु या सिफारिस यंका आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान चाहिँ अन न सिफारिस कया अलि सिरोले भन्मा नेवा दिए दबु नेवा ते त नेवा ख रका चाहिँ सिफारिस यगु आधिकारिक संस्था जुल जे जस आज मेगु बुख पाखे भने त आयागु बुख ख मिसा साहित्यकार मुना मिजमा पिन्त साहित्य वाचन याखला विशेष साहित्यकार मुनाया गोसाले आइतबार साहित्य वाचन बहना ज्याझो जुगुदु विशेषना मिसा साहित्यकार पिनिगुजक क्रियाकलाप निभया वया चंगु थो संस्था पाखे थोपाले विस्क सवाबी कथा गोसा खल मिसा साहित्यकार मुना मिजो तेतजक साहित्य वाचन याक बिगु ख गोसा खल या नाय विमल प्रभाव बज्राचार्य सभापति जुयादिगु थो ज्याझोले पुलाम प्राज्ञ लक्ष्मी माली मु पहा कथा चाहदिगु ख ज्याझोले पुलाम प्राज्ञ ध्रुव मधिक मिस साहित्य मिसा साहित्यकार मुना या पुलाम नाय अञ्जना ताम्राकार साहित्यकार प्रतिसरा स्यामी विशेष पाएको छ थिङ्गु ख ज्याझोले पुलाम साहित्यकार मङ्गला देवी स्थापित बज्राचार्य या त सम्मान नै यागु ख ज्याझोले कविन्द्र लाल प्रधान मानिक उडा सुबी सुधीर खोगी बसन्त नकमी ज्ञानेन्द्र रत्न बज्राचार्य नारद बज्राचार्य मङ्गल नारायण जोशी समान्त श्रेष्ठ नरेन मान महर्जन सञ्जय राज शर्मा श्रीराम श्रेष्ठ टुयुपुङ योगेन्द्र प्रधान धर्मराज राजकर्णिकार विमल ताम्राकार राधेशा महर्जन आर मनन्दर व सुरज बज्राचार्य पिस थ थ गु साहित्य वाचन यागु ख पकान नियम विशेषज्ञ ज्याझो हे झुल थे ज्याझो मिसा साहित्यकार पनि यहाँको मुना मिजो संस्कृत वाचन यागु थोसे नेपाङ्गो कथा या ज्याझो झुल थसागु अले मेजु मङ्गला देवी स्थापित बज्राचार्य वेक चाहिँ तस्मय पुलाम साहित्यकार थोङ्गोने वेक छ वेक ल छुया दिएको दु मधु मसिल वेक या भाजु अष्टमुनि बज्राचार्य वेक न नेपाल भाषा खेले तस्कहे तदङ्गो योगदान याना झामख वेक मध्ये धुङ्ला अले जी चाहिँ मङ्गला देवी स्थापित वेक या त मचा बलि निसे मसिउ झ्याला छ जी स्कुल या टिचर वेक जीवनाको प्राइमरी स्कुल कृष्ण माध्यमिक विद्यालय रहेका चाहिँ उसले न्यखा डुगो स्कुल चाहिँ वेक अन पङ्का दि जी तिन क्लास तको बना त्यसै मङ्गला देवी मिस्या त योको योको मितुना लिपाको जुसा छि त साहित्य कार्य रूप फुलाम साहित्य कार्य रूप त मिसा साहित्य मुना शिर्पा भना दिएको छु ल ओके लागि चाहिँ योको योको छि त भिन्तुना अलि ल सहना त्यसै ज्याझो सजी आ मेगु मेसुना

Nukakno la sukusa jazo Nepale sa Nepale jazo chingi na suna dila jazo sa a kabi kesari chita dharri dia tol mangke. Ungu budaba arti gada ego bas laga ekada sikono kabi kesari chita dharri dia ya sachi wa ni kogu dikha. Ali weka ya tol mangko se ukono bivid jazo tazula Nepal basa parisad wa titi niwa kyo ya khala pusa pakhi titi jazo ta ya se weka ya tol mangko gu kha. Eya kalmati dua te chungu kabi kesari chita dharri dia ya jhata स्वान दिसना व साहित्यिक मुजायना बुद्धि हंगुदु कवि केसरी धका चाहिँ वेक या त सन 1956 स तत्कालीन जुजु महेन्द्र उपाधि ललहागु ख अले वेक अंग्रेजी तारिख अनुसार चाहिँ 1906 मे 1900 जन्म जुया दिमख अले वेक जेले हे चुना सुगत सौरभ धागु महाकाव्य वेक ल चाहिँ सुया दिगु ख बुधवार वेक या जुन पूर्ण कद्दु बचकालमाथि चुकेहरू सिक्ने चाहन्छ कालमाथि सुया दिन्छ त्यो कुमे भोलि जो पाखेला अलि सि कालमाथि हिँडेका कलङ्की पाखे भेबले देवा पाखेला अब जुन कालमाथि यो मेजर चोकडु अन्धाले गेलु व परिसरे चाहिँ वेक त स्वा दिशा से श्रद्धाञ्जली विषय वेक या त लुमङ्किएको ज्याझो जुगुदु अलि नपाउँ वेक त लुमङ्का छगु भर्चुअल ज्याझो हुनुहुन्छ ल साहित्य शिरोमणि चित्तधर हृदय सचिव निको बुधिया लस्ता नेपाल सम्बत 1146 अनलाथो पारु अचगा दैगु चाहिँ ज्येष्ठ 3 गते आइतबार खुनु डब्लुडिभी या निहानी थ या ज्याजोले चित्तधर हृदय लुमन्ती जुम प्रविधि पाखे छगु ज्याजो जुल डब्लुडिभी व हलिनेवा दबु या साहित्य क व नेपाल भाषा साहित्य दबु या मङ्का गोसाले जुगु थुगु ज्याजोले थनी ने छ द निर्माण जुगु चित्तधर हृदय या वृत्तचित्र भाषा सेवी विनय राजो बाध्य पाखे किने ज्याजुगु ख हलिनेवा दबु या केन्द्रीय नायक मनोहर लाल श्रेष्ठ ज्याजोले लस्को सियासे चित्तधर हृदय नेपाल भाषा साहित्य तदङ्गु योगदान या दिम जो मधुम व्यक्तित्व ख म वक्त यथासम्म साहित्यकार लोचन तारा तुलाधर चित्तधर हृदय सुयादिगु जिगु जात सफु या खे दुग्याङ्क दुवालेगु व पिवालेगु जायाना दिल नुगख तेगु झोले वेकल थ गुरु योगवीर सिंह या उखेला थुकेला जुया चुङ्गु छिना खमुना सम्पादन याना योग सुधा सफु पिकना दिगुरी तस्क तदङ्गु योगदान खन देहदिल थुगु ज्याजोले सङ्गीत कमी सुरेन्द्र श्रेष्ठ चित्तधर हृदय बारे नेपाल रत्न राजभाइ जकमी छुयादिगु मेना पाखुसी लसेहना नियङ्का नदिगु ख थोय ज्याजोले मेहालामी पवित्र कसान चित्तधर हृदय या वृत्तचित्र तयारी आया निधि कवि नवीन चित्रकार तस्क मेहनत याना ऐतिहासिक पला छिनादिगु खन नेथना दिल अमेरिका या सिकागो हेचुनादीमा नाजाम साहित्यकार केशर मान थाम्राका र नुगख तेगु झोले चित्तधरिया जिगु जात या छगु बो कल्प वृक्ष दक्ले नापा ज दपति पिथने खगुली तस्कङ गौरवता धया दिल थोकथ थो ज्याजुले नेपाल भाषा साहित्य दबुया कजी राजभाइ जकमी चित्तधर हृदय या छपु सिना खौ बसे चित्तधर हृदय या साहित्यिक योगदान बारे दुग्यङ्क थगु विचार निभया दिल अति थो ज्याजुले डब्लुडिभी कव या कजी नरेशके आ डब्लुडिभी कव व नेपाल भाषा साहित्य दबुया मङ्का गोसाले नेपाल भाषा या महारथी पिनिगु बुधि हनेगु व वेक पिनिगु व्यक्तित्व कृतित्व पिबेगु ज्याजो नापथे मध्य कन्याका हुना भनेको खन निस्ना दिल थुगु ज्याजोले नेपाल भाषा साहित्य दबुया लिउ कजी कवयत्री प्रतिसरा स्यामी चित्तधर चोयादिगु यसो धराया मुले राहुल नागो छिना ख निङ्का जुमे बुद्धि कयादिमी सपसित सुभ्याबिया दिल डब्लुडिभी ज्याजो न्याकामी विद्यादली न्याकादिगु थुगु ज्याजोले हलिनेवा दबुया संरक्षक सिजन श्रेष्ठ पौभा स्यामी अञ्जना ताम्राकार शङ्करलाल राजकर्णिकार तीर्थ मैया पिरिगुन उपस्थिति दुगु ख आफ्नो सपाछि कवि केसरी चित्तधर हृदय तलुमङ्कु से वेक या सचिव निको निको गो 120 को गो बुद्धि चाहिँ या ले चाहिँ वेक हेर्छ आफ्नो लुबङ्के पक्का आ खोलाबले चाहिँ तस्को अबुझी त मुना आल तस्को हे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त जुगु जुल ऊ इले सचिव लगभग सचि द थियो म थियो न्यो ढ्या मलाई मलाई वेक ल्यामा चाहिँ इले जब चाहिँ राणा शासन इले चाहिँ गुली थाको होला उसले मनु त्यो त आखजको भने ससा झेले तैगु थगु भ्या नेपाल भाषासँग लासा झेले तैगु चिसँग यो को अजाको खत निन होइछ नि यजा वेक पिनको
योगदान हे झी नेवा तथा थेंगु ख झीगु नेवा भा साहित्य थुली चाहिँ व्यापक रूपमा वंगु ख अझन नेवा भा साहित्य या त संरक्षण लागि योको योको ज्याया मागु दु र थजागु भर्चियोले सा वा भौतिके सा ज्याना वेक अपिन त लुमंग कुसे नगु पुस्ता या पिन त वेक अपिनको योगदान या बारे चर्चा नचिस यहाँ नाम हुन्छ तासिन ज्याजु स हकलम मेगु सफु मिसवा

निपाङको तिपा दुङ्गा आख्न लसकुस ज्याझो नेपाले स नेपाले ज्याझो छिङ्गेना सोना दिल झिगुना खरसमिला आ दक्ले लिपा थन न्युगु बुख तेतेना लापाङको बुख ख ख्वापा प्याखौ बारे बिना जोशिया बृहत ग्रन्थ बिहाउल यल नेवास समाज या गोसाले वरिष्ठ नृत्य गुरु बिना जोशी राज भण्डारी चोया दिगु नेवार समुदायको मुकुन्द नाच नाया गुसफु आइतबा थिथि ख्यो या परम्परागत गुरु पि पाखे चिकि फेनि याना उले ज्याझु बुधु यया नेपाल पुलिस क्लब हले जुगु उजु उगु ज्याझु गोसा खलाया नाय नानी काजी साक्के या सभा नाय सि जुगु ख पितुबुज्या ज्याझोले मरुपि गुरुपिनी गुलुमन्थी मौन धारण यागु ख ज्याझोले दक्लेन हपाम वरिष्ठ नाट्य गुरु वरिष्ठ नृत्य नाटक गुरु बिना जोशी राज भण्डारी पाखे गुरु वन्दना यनादिगु खसा झिन्नीमा गुरुपिन्त बेताली चिका सम्मान न यागु ख सभापति नानी काजी साक्के लस्कुस नोचु तयादिगु उगु ज्याझोले झिन्नीमा गुरुपि पाखे नेवार समुदायको मुकुन्द नाच सफु सामूहिक रूपमा उल्लेख यागु ख नृत्यविद बिना जोशी विद्वान यज्ञपति मान बज्राचार्य डाक्टर दुर्वेश चन्द्र रेग्मी संस्कृतिविद हरिराम जोशी पिन्स सफु या तपाईँ नुग ख तगु खसा ज्याझोले श्वेत वर्ण आर्या वलेओ कितेश्वरिया सरिया बज्राचार्य बज्रयोगिनी चर्या नृत्य प्रमिला रघुवंशी तुलसी मलो खल पाखे जय भैरव प्याख व नागासा प्याखन निभोगु ख थो सफु मुखेना चाहिँ बिना जोशी जुन चोइत दिएगु सफु तस्को हे व्यक्ल थगो जीवन जोशी हे अनुसन्धान याना व्यक्ल चाहिँ चोया दिगु ख थो सफु चाहिँ 1500 पृष्ठ या ग्रन्थ ख सफु शिवेन ग्रन्थे दासा जिल्ला मला चे छद दे रुङ्ल व्यक व्यक्ल चाहिँ नियदम्बिक चाहिँ चोया दिगु सफु ख 2026 साल निशे चाहिँ त्यो ग्रन्थ चोयत व्यक्ल अध्ययन सूर्यान दिगु ख झिन्नेगु खण्डे विभाजित उगु ग्रन्थ नेवार समुदायका परम्परागत मुकुन्द नाच चरिया नृत्य कार्तिक नाच गथु प्याख देवी नाच महाकाली नाच नीलबाराही नाच भैरव नाच श्वेत काली नाच सिकाली प्याख आकाश भैरव नाच लाखम नाच निसे भक्तपुर बागलुङ बेनी व कुसमाया हनुमान नाच तकया विविध सांस्कृतिक नृत्य परम्परा या विस्तृत अध्ययन अनुसार दुगुजुल संस्कृति शिरोमणि हरिराम जोशी भनाएको ठाउँ थो ग्रन्थे परम्परागत मुकुन्द नाच बारे चाहिँ बृहत शल्यक्रिया हे यहाँ तगुदो थन नेत भुलु अजिमाया मूल गुरु देवकृष्ण महर्जन किलागल देवीनाथ या मूल गुरु ब्रह्मु महर्जन सिकाली प्याखया मूल गुरु महन्तलाल डुङ्गोल जल प्याखया मूल गुरु धनबहादुर महर्जन किर्तिपुर इन्द्रायणी देवी प्याखया मूल गुरु बेखालाल माली थेचो इन्द्रायणी देवी नाच या मूल गुरु धर्मराज माली काठमाडौँ गथु प्याखया नृत्य गुरु सूर्य नारायण मालाकार ललितपुर कार्तिक नाच या परम्परागत गुरु प्रतापधर शर्मा संस्कृत शिरोमणि हरिराम जोशी चर्या संस्कृतिविद यज्ञमानपति वज्राचार्य चर्या नृत्य गुरु पद्मराज वज्राचार्य हेमवज्र वज्राचार्य पिस संयुक्त रूप थो ग्रन्थ लोकार्पण यागोजल अहिले वेकले चाहिँ वेक ग्रन्थ या चोमी बिना जोशी दैदी कथा चाहिँ नापा निसे हे थो मिसा पिस प्याखली चाहिँ

voilà. Lien ya khona go khosa 2016 sal li pani sin sa ko he mi sa pi pyakhon wi khong go kha ona sa jin ta se pyakhon le tla azo fo i kala ra khasa de he di ve khala tas ko he ta rong sa fu zula jin ya sa la pije sa du ka ale sa fu na ne do kha ke ya mu ta ra khun sa nya do la ta go zula wo sa fu edi chik pen ta na itihas bises en sa mu kun do nas pare chu kha chik pen ta ma sa sa thu sa fu chik pen sa na ka de fu सफ़ूए लगी जाए गोन संपर्क या ना दियो लेची नहीं रखा था इवले ये लोग निवास समाज से जाए संपर्क या ना दियो आ डॉक्टर लिपांगो बुखार होने लगी थी तो ना कि पुली रिदम ऑफ ट्रेडिशन और कल्चरल एक्सचेंज था कुछ आजो कुछ आगो तो ये महानगर पालिका बार वड़ा स्थानीय निकाय आर्थिक वाली पाखा नियनु या दाफा संगीत काल बिला ताल व परंपरा जाजो ये यहाँ ब्रह्म त्वाया थी श्री श्वेत भैरव बाजा खोला व किपु नगर पालिका दस वड़ा तौन अनी त्वाया तौन अनी दाफा खोला ये दथी जुग खा नियनु या थी थी दाफा संगीत दाफा भजन बांसुरी धीमे बोले धुन में तो थौ थवे अंतर्क्रियात्मक रूप में काल बिल व से की गुसिनी को कार्यशाला यहाँ लिपांगो दी ज्येष्ठ दु गते शनिवार वड़ा लिया दस या सामुदायिक भवन बजेना उ ज्याजो समापन आगे ख ओ ज्याजोले श्वेत भैरव खलाया दुजपिंग किपुया तन अनि आँखा छि निथा उपस्थित जुया ये हालिगो दाफा भजन किपुली सेनेको जयागो खसा तन अनि दाफा खला पाखेन तन अनि दाफा खलाया मिसा दुजपिन छ सूचना यागो देवी प्याख्ने आधारित मे सेने जयाना मे कालबिल याना सेकिगु सेनेगु जयागु ख बाँसुरी बादरे न नि छक्कोगु शताब्दी आधुनिक युग नोटेशन बाँसुरी पुइबले हाफ नोट व फुल नोट या त गुर कथा क्यागु व बाँसुरी पुइबले मेया भावना कथा पुइगु तरिका श्वेत भैरव या गुरु नीतिक डङ्गो लसिना दिगु जयागु खस तनि दाफ खला या बाँसुरी बादक पिन्छ नुगु खसेकिगु थुइकिगु अनुभव जुगु ख कङ्गु जुल थो दाफा भजन दैछु तस कहे पुलाङ्गु जुल हलाछि गुली आज पिसा चाहिँ हालाइ चङ्गु तर दाफा भजनले चाहिँ यो कोहे भ्यात भ्याय खगो त लाग्छ हामीलाई अन मिथिला भ्याना दैछु आज यसमा संस्कृत नदै खनि हिन्दी नदै खनि नेपाली नदै खनि तर यहाँसँग थो दाफा भजन बारे वृहत रूपमा अध्ययन अनुसन्धान यहाँ छिगो जुन मूल दैनी वा जुन डिस्टोर्ट मजुको मूल दाफा वो चाहिँ मालेको तस कहे आवश्यक तर उके लागि दासा योको अनुसन्धान गर्दा पनि मालिको योको हे राशि मालिको वजा चाहिँ सुनागु देखेजी दासले थौया ज्याझो नेपाली पाखे नजिउ भनेको इजुल निनामी भाजु मेजु पनि ज्याझो छिङ्गिना दिगुले योको सुबा जी रश्मिला